0: Lach- und Sachgeschichten. Heute mit dem Geheimnis des Brennnesselstaubs, einem Lied vom Sommer, einer ganzen Menge Puffreis, einer großen Schlammschlacht und natürlich mit der Maus und dem Elefanten.
1: हंसाने और सिखाने वाली कहानियों में आज बिच्छू घास की धूल का राज, गर्मियों वाला एक गाना, ढेर सारे मुरमुरे, कीचड़ में जबरदस्त लड़ाई और हमेशा की तरह चूहा हाथी और बतख। दस वा हिंदी।